0: भने बढी साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिन्छु ल।
0: किन्देऊ ल।

0: पठाउनै बनाएर छोडिनि।
1: अब के त गाडी किन्नु पर्यो मैले तलाई।
0: अब त्यो रफ्तारले भेट्टाउन सकिएला जस्तो छैन बा। अब सिजै हेलिकप्टर हान्ने तिम्रो जस्तो जमाना रहेन बा। अब अहिले त मायामा पनि छक्का पनि आउन थालेछ।
2: Thank you.